उन से किसी तरह कोशिश कर रहे तो हैं। Minnesota, Robert Frank David 202, Robert Frank David 202 out of Minnesota, S43, he's advising it to his van.